अपनी हता के परावार आप ग्रह साक्ति फिरापता मार एक ना गली जंजीरियां एक तरी चढ़ बस्यार आप ट्राई करे आप कैसों करी पकार नाने करना जिनकिया बैठे सी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जिक हिज्जै कोट इंद्र इंद्रान साह साहान गणिज्जै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कन्हर बूंद बसर मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछुड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ हर नाम मंत्र दृढ़ाए दा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन तुरे पया संजोग हर नाम मंत्र दृढ़ाए दा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह
ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਂ ਦੈਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਂ ਦੈਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ

सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन विसरह तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड़ मुगद सदा से पाई गुर के शब्द प्रगासा

गुर के शब्द प्रगासा हर जियो तुम आपे देह बुझाई हर जियो तुद विटहुं

हम शब्द मुए शब्द मार जीवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई। शब्द न जाण है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम्मे वारो वारा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मन मुख मुगद गुबारा। आपे कर विख मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै पाई, करता करे सो होई। नानक नाम वस्या मन अंतर पाई, अवर न दूजा कोई। आपे कर विखै मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै पाई, करता करे

पौड़ी बढ़ी वडा अपार तेरा मर्तुबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतुबा जिया अंदर जियो सब किस जानला सब किस तेरा।

लिखिया रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन की ती सो पार पया काहु नानक करते किया बाता जो किछ करना।

रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिनवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरवाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हरानक अनेक अनंता। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमृत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ा वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें ते नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तूंदरी आओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना हर गुण सद ही आख बखाना। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ पई ले निवासा पानी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबी अले। मान एकना चेतस मूड मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।
ना हों जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिंतो नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप

शरण परे की राखो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राम। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरण मन रहा हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट स्वै तुम काहो, आप हाद मुहे बचाओ। सुखी बसा मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर इच्छा निज कर द करिय, सा बैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाद मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तोज जो करी हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कान को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह वध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वदन सृष्ट सब धारै, आप आपनी बूझो चारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर अकैठा।
सागरी सृष्ट दिखाए अजंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संगरो। दुष्जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करोरण काता। जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तै है ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट ट्रे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट शाह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ती ताहे वारा। जिन हर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी। सर्व ठौर मोह सहाई

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर

0: हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब

विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का

अब हम चले ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखहो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राखहो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राखहो लाज मरार। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रा मेरा। एह बिनंती सुन प्रा मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। अपनी सरन राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किन्नै बिरलै जाते। सुनो बिनो प्रा मेरे मीता, चरण कमल वसह मेरे चीता। नानक एक करै अरदास, बिसर नाही पूर्ण गुण तास। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। हों आया दूर हों चल कै, मैं तकी तौ सरनाए जियो। मैं आसा रखी चित मै, मेरा सबो

हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई, शब्द ही मुक्त पाई। शब्द मन तन निर्मल होआ, हर वसिया मन आई। शब्द गुर दाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा। बिस्टा के कीड़े बिस्टा माहे समाने, मन मुख मुगद गुबारा। आपे कर वेख मार्ग लाए भाई, तिस बिन अबर ना कोई। जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट भाई, करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अबर ना दूजा कोई। आपे कर वेख मार्ग लाए भाई, तिस बिन अबर ना कोई। जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटे भाई, करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अवर न दूजा कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सत द्वारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, सो कहो टल गुर सेवियन, अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परस ऐ गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, हो वै सिफत खस।

सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, सतगुर मिले उलटी पाई पाई, जीवत मरे ता बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मन रे हर हर से तिलवलाए।

गौर सब दी मिलाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वरै आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वरै सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन भगत वछल अनाथ नथे शरण नानक पुरख चित्त है। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का हुए विचारो तित कर गावहु सोहिला सिवरे हो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरभाओ का सोहिला हाओ वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असीसड़िया ज होवै साहिब स्यों मेल कर करो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दिहावन राग आसा महला पहला शह कर शह गुर शह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ विसोए चसया घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्या नलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही साव मह जोत जोत है सोए तिसद चानण सब मह चानण होए गौर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सुवारती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग कौ होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कामे क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हार लेव
मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तन अंतर होमें कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पावै जमकाल सह है सिर डंडा हे हार जान हार हार नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड़ वड़ा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौरी पूर्वी महला पंजवा कराऊं बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला औद घट दिन सरणारे मन गोर मेल काज सवारे रहाओ इहो संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पिया वै इहो रस अकथ कथा तन जानी जा कौ आए सोई बेहज हो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पावहु सुख सहजे।

0: कि तुनी श्लोक महला पहला
1: बलिहारी गुर अपने द्योहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए

0: विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेट विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरा भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौषकसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत श्री विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत

बंधन बंद पुआए सोए पया कीर्तन च सब कोय नच नच हसै चले सिरोय उड ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ

लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर पव्या ते तो लव्या बहु एकिया देही दुख दिया सौ वे जिया अपना किया अन्न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अहनस कहरे मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता पागो पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विना में किस्ता न पाई रहे वाणी बनी मसानी अंदर जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी पगे।

0: तू करता करना मैं नाही जाहू करी न होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब शिव तो सवाल्यो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सुख रहा महला दूजा
1: जोग सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण है खत्री सबदंग सूर सबदंग शूद्र सबदंग प्राकृत है सर्व

होते सरइये महले पंजवे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुरमत मल नासी सतगुर चरण कवल रिद तारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं गुर रामदास कर किया प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जनमत गुरमत ब्रह्म।

सूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जग मगा तेज भूमंडल छायो पारस परस

पूले सोते दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते हे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

प्रभ अपना सदा त्याया गुर अपने बलहारी जिन पूरन पैज सवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया संतह तिस बिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहा प्रभ अपने वर दीने सगल जीव वस कीने

0: आए शीश नवाए क्या थी है जारी दे कुछ दे जाए महला पहला
1: पर पुस्तक संध्या बादंग सेल पूछ बगल समादंग मुख झूठ बे भूकन सारंग

सहाय काल सज के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान परोसा दान दान सिरदान नाम दान सिर अमृत सर साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा

सच्चा सहम एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू देत मिले सच तिनी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाने मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का